चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख कौ कहना सकत केहे नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया भव जल विचों काढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा जो

कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु,

राओ रंक कर डरे रीते परे परे सखनावे यह ता को व्यवहारे अपनी माया आप पसारी आप है देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रह नियारा अगणत अपार अलख निरंजना

0: रंगी सब तेरह न्यारा।
1: वो जो एक ओंकार परमेश्वर है जिन्हों तुसी राम कहिंदे हो, रहीम कहिंदे हो, अल्लाह कहिंदे हो, कई नाम ने उस परमेश्वर दे, वो कुदरत विच जो वरतद उनू देख के असी उदे नाम लेंदे हैं भी तू इस तरह है, तू इस तरह है, तू इस तरह है, तू गोपाल है, गोबिंद है, राम है, रहीम है, उदे नाम ने कई अनंत नाम ने। महाराज जी कहिंदे अपनी माया आप पसारी, आ माया ही है सारा संसार, जो जो ये अख देख रही है वह सब माया का ही हिस्सा है, त्रैगुणी माया। यह संसार, यह सारी माया रूपी संसार की रचना उन्हें आप की है, ये कुदरत रूपी जिहड़ी माया है ना, ये उन्हें आप ही बनाई है, इनू साजना उन्हें आप ही किया है, इहदा पसारा भी आप ही किया है, और पसारा करके वह देख भी आप ही रहा है, ताई ते वह साडे लेखा जोखा आप करता है, उन्हें किसी होर नू नहीं कहा भी तू लेखा कर, हो सकता है हेरा फेरी हो जाए, हो सकता है कोई रिश्वत ले लवे, कोई झूठी सिफारिश लैके आ जाए, पर वह लेखा उन्हें रखा ही अपने हाथ है, लेखा उन्हें करना ही आप है। इस वास्ते इसलिए कहा ना भी वो जो लेखा रब मंगे सी तू आहो कह रहे, लेखा किने मंगया, रब ने, रब कौन है, जिन्हें कुदरत साजी है, जिन्हें मैनू तुहानू सारिया नू साजे है, वो आप लेखा मंगदा है। अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा, वो पसारा भी आप कर रहा है और सारिया दे विच बैठ के देख भी सारिया नू रहा है, उदे तो कुछ लुकिया छुपिया नहीं, कुछ नहीं लुकिया, वो जानदा इहदे अंदर की भरिया है। असी लुक छुप के बड़ा कुछ कर लांगे ये सोच के भी दुनिया नहीं जानदी, पर यह भुलेखा पा लैंदे आ भी रब नहीं जानदा, वो जानदा है। लूक करत बेकार बिखड़े प्रब नेर हूं ते नेरिया, वह नेड़े तो भी नेड़े है, वह साढ़े दिलों दियाँ जानता है, वह बिना बोलियां दस सकता है मेरे मन च की चल रहा है, मैं अंदर की सोच विचार रहा, की अंदर घड़ रहा, घड़त घड़ रहा, की प्लैनिंग, वह सब जानता है, बिना बोलियां सब की जानता। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण, उहदी अवस्था नहीं जान सकते पर वह सारिया की जानता है, इसलिए वह एक है। नाना रूप धरे बहुरंगी सब ते रह न्यारा, वह न्यारा है सारिया नालों, पर जिन्ने भी रूप ने रंग ने यह सब उहदे ही बनाए हुए ने। नाना अनंत, अनंत रूप और अनंत रंग ये सारे ही उहदे ने, पर वह सारिया दे विच वरत के भी, सारिया दे विच रह के भी सारिया तो न्यारा है, वख है, वह जूना पैदा करन वाला, बनाउन वाला, पर वह सारिया जूना तो वख है, अजूनी। ये काल दा चक्कर उहदे हुक्म च चल रहा है, जिहड़ा काल दा चक्कर है, धरती घूम रही है ना, ये काल चक्कर ही है, ये काल चक्कर उहदे हुक्म दे विच है, क्योंकि वह आप अकाल है, वह उहदे उत्ते कोई काल का चक्कर नहीं चला सकता, वह अकाल है, वह अजूनी है, वह सदा सलामत है, उन्हू कोई नहीं मार सकता, कोई पैदा नहीं कर सकता, कोई जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि वह सदा सलामत है, वह अपने आप दे विच है, अपनी रचना खुद करने वाला है, आप ही ने आप उन्हें अपने आप नू रचे है। इस वास्ते नाना रूप धरे बो रंगी सब ते रहे न्यारा, हर की गतन को जाने, उस दी अवस्था नू कोई नहीं जान सकता है।
0: अगनत अपार अलख निरंजना,

तवै चलायो। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल।

0: ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵੈਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠੱਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਖੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਕਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸਨਾਥ ਰਾਗੂ ਜਿਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿਹੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੁੰਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੀ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨੇ ਮੇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦਬਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰ ਵਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦਬਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਗੰਮਾ ਗੰਮਾ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵਹੀਂ ਸਭ ਧਿਆਵਹੀਂ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਦਿਆ ਬਹੁ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਤੇ ਆਵਹੀਂ ਹਰ ਤੇ ਆਵਹੀਂ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਜੈਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹੀ ਜਪਹੀ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪਣਹੀ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਬੜਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰੇ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੇਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਜਿਆ ਰਮਿੰਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। जो तुम दहें सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ते आया, जिस नाम कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुग गवाया, तुदया विछोड़या आप मिलाया, तू दरिया सब तुझ ही माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जन सब तेरा खेल, बिजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिस नाम तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवरड़े भाई रे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिलसा संगत भाजी केवल नाम, स्रंजा लाग पवजुल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रख हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबे रिन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये, आभाद मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा, राख लियो मोहे रखण हारे साहेब संसहाए प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुमहो पुरी चतरदस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सलोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद्यंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिव कर को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पड़ पड़ की जन्ने जाब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत देहे अपारा जवे आ कर्क कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन श्रिष्ट सब धारे आब आपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरह तिन रालम जानत बेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ ताका मूड़े उचारत पिता जाको भेव ना पावत बिता ताको कृपाहण अनुमानत महामूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव रंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुध है जेती बरनद भिन्न भिन्न तो ऐ तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा इक रूपे अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जेर से तज कीनी उतपज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अगैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आ जुगा स्वरूप सुयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबारे असिख संघरो दुष्ट जिते उठबत उत्पत्ता सकल मलेच करो रण गाता जे आस तो जे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जहे न हरयो ताकि ताप तन कमय हरे हो रिद्ध सिद्ध घर मोसव होई दुष्ट शहा शवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा कल्पांस्ते तहें उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्वठो मोहो सहाई दुष्ट दोखते लेहो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सरठ मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे तबते को आंख तर नहीं अन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुपीद कहे हम एक ना जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार बाहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार बहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां वाया सह सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्द तंगाव हरी गेरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सवना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो मसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच साहेबा क्या नाही घर दे रै घर दा दे रै सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच राम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियाँ एह बड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तिथ कारस बागे कारस बागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया दुर्करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइओ जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो एह वस्त जी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लख त्रिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया बेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पया बेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम तुमरी कृपा मैं कोए न जाने तुमरा ऊचे ते ऊच सगल समग्री तुमरे तुमते होए सो

तेरा नाम सत है, नाम सत है वाहे पौड़ी बुढ़ो बुढ़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंगा नेक ना जपन करतबा जिया दर जियो सबके जान ला सब तेरा बस तेरा कृपला तेरा कर आनंद बधाई तुत कर मार मुता तेज अपना आप जन सर्व कला भरपूर जिसे जत कता नानक दसन दा।

अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अगम अगोचर सच साहेब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी सिफत की है गुरु अर्जुन देव साहब ने साधुओं दी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओठ सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, ए मान तेरा पाई। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्यहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत परे भंडारा। संत मिले ते भगती दे भंडार पर कर। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे। उस अकाल पुरख की गल की, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। अकाल पुरख उन्हूं जेड़ा जेड़ा कहिंदा है, उहदे गीत गाउंदा है, उहदियां कहानियां करदा है, उहदा सिमरन करदा है। जो जो कहे सो मुक्ता होए। पता लगा जी, जो जो कहे सुन मीता, साध जना की कथा। हुण जिहड़े अनपढ़ लोग नहीं, वो बेचारे बाणी नूं साध समझ पैंदे कि मैं जे को पाया तो मैनूं कोई संत जी आखदा है। गल इत्थे टिकी है, साध कै संग मुख उज्जल होत। कितें पूर्ण साधु मिल जाए तो मुखड़े नूं उजला कर दिंदा। साध संगम मल सगली खोत, साधु दी संगत मिल जाए सारी मैल खत्म कर दिंदा। साध का संग आवे वस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। किन्ना कुछ लिखिया सरकार ने, गरीब नवाज दया करे। अज दे साधियों नूं, अज दे साधक होण वालियां नूं गुरु समत बख्शे। एक बंदा सराफ नहीं गा, सराफ सोने वाला, ते अपने आप नूं सराफ कहिंदा वी मैं सराफ। लोहा कुट के कोई चीज़ दातरी बनाई नहीं जांदी। लोहा कुट के ते कहिंदा मैं ते सोना कुट लैना। इहो ही कहानी आ अपने आप नूं साध कहण दी। भाई गुरमुखा, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन बीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा है। जिन्हों मिलते ने साध संग मल सगली खोत, साध संग मुख उज्जल होत। जो साधुओं की संगत मिलती है मेरे साहब गुरु ग्रंथ साहब जी की, तो मुख उजले कर दी। वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु। चढ़दी कला, चढ़दी कला।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

देवेन सह स्तव गंधिव चलत मोहि। स्तव में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुरु साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत तिस पावे स्वार्थी होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मुहियाई प्यासा। कृपा जल दे नानक सार को होए जाति तेरे नाई वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर्व भरिया मिल साधु खंडल खंडा। हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हरले मंडल मंडा। हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा, हे कर दंडौत पुन वड्डा। हे राव साकत हर साधन जाने, तना तरह मैं कंडा। हे ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पाव है, जम काल सह सिर डंडा। हे हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन मरण पव खंडा। हे अविनाशी पुरख पाया, परमेश्वर सोव खंड ब्रह्मंडा। हे

राग गौड़ी पूर्वी महल्ला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत चहल की बेला यहाँ का चलो हर लाहा अगे वसन सुहेला आओद कटे दिन सरे नारे मान गुर मिल काज सवारी रहो

तिस भेटे दारिदर ना चंपै, कल सहार तास गुण जंपै। जंपो गुण बिमल सो जन जन केरे, अम्ये नाम जाको फुरिया। इन सतगुर से शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर तरिया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक, चाह

अनपौ उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मांत मरण।

0: जिनको गुरसो परसन दुरत दुरंतर नासै। गुर जिनको सो परसन मान अभिमान निवारै। जिनको गुरसो परसन शब्द लग पव जल तारै। परच्यो परमान गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग। श्री गुरु शरण पाज काल कब भुगत मुकत सब गुरु लग।
1: सतगुर खेमा तानिया जुग जूत माने अनभो निजा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगत अमर भगत

जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अबरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस

सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो। तारन तरन खिन मातर जाको दृष्ट धारे शब्द रिद्ध विचार।

0: दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवै जियो।
1: धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध, सुर नर मुन जन जाच है, शब्द सार एक लिव लाई है, उन जानै को तेरा अपार, निरपो निरंकार अकथ कथनहार, तुझे बुझाई है परम पूले संसार, छूटो जूनी संघार, जम को ना दंड काल, गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार, अहनिस जप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, हो बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर, कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो, एक मुख रसना रसो जुग जोर कर, हुन मन बच क्रम जान, अनत दूजा ना मान, नाम सो अपार सार, दीनो गुर रिद धर, नल कव पारस परस, कच कंच ना होए, चंदना सो बास, जास सिमरत अन।

पांच भूत बस कीने जमत ना तरास, गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पात।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वरे कायनात रोशनी चराग बार गए नायत, चौहान जहानां दे मालक साहिबे कमाल साहिबे जमाल साहिबे बरकत साहिबे अजमतां दे मालक बेअंत भगतां दी टेक दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीआं दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दीआं हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने साडे सभना दी झोली दे अंदर पावन पवित्र हुक्म दी दात पाई है, सो पावन हुक्म तनासरी राग दे अंदर चौथे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जीआं दा शब्द है। जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 669 अते 670 अंग दे उपर सवाईमान है, सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राहीं किहड़ियां नदरे नायतां दे नाल सानूं निवाजना करदे ने। आओ प्यार सत्कार वैराग दे विच भेज के सरवण करना करिए जी। तनासरी महला चौथा, ईशान पूरक सर्व सुखदाता हर।